0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Jurisprudence.
2: सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड टेकिंग अप पिटिशंस बाय पर्संस हु वर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। उसमें ये बोला जाता है कि जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है। बट बाई मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड इवन वेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम इवन दे कैन गो टू कोर्ट। तो पहला एस्पेक्ट तो ये था। दूसरा कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी। कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो इवन ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू हायर अ लॉयर और उसको पूरी कोर्ट की वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज नहीं पता है, उनकी बातें भी कोर्ट तक पहुंचने लग गई। थर्ड वॉज सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने, नाउ एनजीटी ऑल्सो टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी न्यूज़पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया। चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स जिसमें ए वर्सेज बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए, बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजंट रिस्पॉन्सेज। अदर देन दिस मॉनिटरी कंपेंसेशन इक्विटेबल रेमेडीज भी कोर्ट देने लग गई एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। अब जो दो मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में, वन इज आर्टिकल 19 एंड वन इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कोर्ट ने रीड किया हुआ है राइट टू नो। तो इसमें राइट टू नो कोर्ट ने कैसे इम्प्लीमेंट किया कि उसमें कोर्ट ने अथॉरिटीज को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स हैं अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स। तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इम्प्लीमेंट किया। एंड आर्टिकल 21 में I will be a little brief. Article 21 में there were few cases, जैसे starting में court ने Article 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि there is a right to live in a healthy environment. वो दून वैली का केस था, specifically speaking rural entitlement केंद्र versus state of उत्तर प्रदेश। इस केस में मसूरी में माइनिंग हो रही थी तो उसको रोक करके कोर्ट ने बोला कि there is a right to live in a healthy environment. बट उसमें Article 21 mention नहीं किया। बट eventually आगे चल के दो तीन केसेस के बाद इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट होलसम एनवायरनमेंट विद फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज द राइट अंडर आर्टिकल 21। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32। तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई चीज आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। And you must have heard the name of M.C. Mehta. He was a big-time environmentalist and litigator. तो इनके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं। जो लॉ स्कूल में जाते हैं वो तो काफी ज्यादा इनका नाम सुनते हैं, जनरली भी इन्वायरमेंट सर्कल्स में ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स। तो वंस यू गेट अ राइट, व्हाट एमसी मेहता डिड इज ही फाइल्ड पिटिशंस इन कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32, जिससे उनको एक्चुअल रेमेडी मिले। क्योंकि जब एक वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, सो नाउ द कोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ राइट अंडर आर्टिकल 21, सो देयर इज अ रेमेडी एज वेल इन्वॉल्वड। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ टू केसेस, गंगा पोल्यूशन केस एज एंड द ओलियम गैस लीक केस। तो जस्ट टू टेक वन एग्जाम्पल, इन द एम सी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, एम सी मेहता वेंट टू कोर्ट एंड इट सेड दैट ये टैनरी से जो पानी, जो केमिकल फैक्ट्रीज और टैनरी से जो वेस्ट निकल के पानी में जा रहा है विच इज पोल्यूटिंग द गंगा रिवर, इवेंचुअली द कोर्ट हैड टू ऑर्डर टू शट डाउन दीज टैनरीज। सो दिस नाउ राइट हैज टेकन इन द फॉर्म ऑफ अ रेमेडी एज वेल। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन, इसमें कोर्ट ने पहली बार एक हाई लेवल पे एनवायरमेंटल रिमीडिएशन के लिए कॉस्ट पे करने के लिए बोला केमिकल फैक्ट्रीज को। एंड द टीएन गोदावरमन केस, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसमें कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडमस इशू किया जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ये ओरिजिनली केस था और अभी तक इस पे ऑर्डर्स और हियरिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में। सो दीज वेर द मोस्ट फर्टाइल ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें राइट्स और रेमेडीज काफी ज्यादा इवॉल्व किए गए.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। श्रोताओ, अभी आपने बैक टू बैक दो कलाम सुने। अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में कलाम उम्मीद होगी कोई, जिसे हमने लिया था दिल पड़ोसी है एल्बम से। इसके ठीक पहले आपने सुना शायराना एल्बम से मिर्जा गालिब का कलाम, जिसे गाया था जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं एल्बम यारों रब से दुआ करो, इसका कलाम अखिल सचदेव ने गाया है। इसे रश्मि विराग और प्रवीण भारद्वाज ने लिखा, मीत ब्रदर्स और निखिल विनय की तर्ज है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। हमारी अगली पेशकश शुभा मुदगल की आवाज में एल्बम अली मोरे अंगना से। शुभा मुदगल की आवाज है और गीत भी उन्हीं की रचना है और संगीत है जवाहर वत्तल का।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। श्रोताओ, एक विशेष सूचना। जुलाई मास की 23 तारीख को हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए शोभा गोटू की आवाज में ये रचना। इसे लिया है हमने एल्बम द जीनियस ऑफ शोभा गोटू से और इसे संगीतबद्ध भी किया है शोभा गोटू ने ही। ये एक पारंपरिक रचना है।

0: जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं। स्पर्श, कथा।

0: दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से, अभी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए रूना लैला की आवाज में बज़्मे लैला एल्बम का ये कलाम। प्रवीण शाकिर ने लिखा इसे, निसार बज्मी ने संगीतबद्ध किया है।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे अभिजीत की आवाज में लम्हे फिल्म का ये गीत, और अब आपको सुना रहे हैं के गौतम की आवाज में गाना।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए आकृति ककर की आवाज में आ देखें जरा इस फिल्म का गाना। इरशाद कामिल हैं, गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाजों में आंखें इस फिल्म से प्रसून जोशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है आदेश श्रीवास्तव ने।

इस गाने के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे दीजिए नमस्कार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। आज इस कार्यक्रम में आप सभी के लिए गीता दत्त के गाए कुछ फिल्मी गीत। गीता दत्त और साथियों की आवाजों में फिल्म मिस मैरी का गीत सुनिए। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हेमंत कुमार।

कार्यक्रम का अगला गीत हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ, गायिका गीता दत्त, और ये फिल्म है साहेब बीबी और गुलाम।

0: जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: गीता दत्त को सुनिए फिल्म सुजाता में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है और संगीत है सचिन देव बर्मन का।

कार्यक्रम का अगला गीत ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, आवाजें गीता दत्त, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेज 55।

0: ചേട്ടാജി.
1: ഹിന്ദി സിനിമ കീ കുച്ച് കൾട്ട് ഫിൽമേ ഉൻകെ നാം പർ ഹേ സ്പർശ് കഥ ദിശ ഓർ ചശ്മെ പർ ദൂർ.
2: ഉന്നോനെ കഹാ കി ദേഖോ അബ് സിർഫ് ഹം നൌജവാൻ തീനോ ദിഖാ രഹേ ഹൈ, സിർഫ് കോളേജ് കെ യുവക് നഹീ, ഉൻകെ മാ ബാപ് ഭി ആയേ, ഉൻകെ ചാചാ ചാച്ചി ആയേ, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला. सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा. मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह. तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया.
2: एक और आ गया.
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा.
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की. 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
6: सुनिए
7: कैफी आजमी की गीत रचना एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में हम आपको सुनवा रहे हैं. स्वर गीता दत्त का है और ये फिल्म है कागज के फूल.

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म बाजी से चुना है। आवाज गीता दत्त की, गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

0: वार्निंग।
1: और लीजिए अब एक सूचना सुनिए। जुलाई मास की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज गीता दत्त की और ये फिल्म है लड़की।

0: गीता दत्त की आवाज में अभी अपनी फिल्म आर पार का गीत सुना। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म देवदास का गीत, स्वर हैं गीता दत्त और मन्ना डे के। रचनाकार साहिर लुधियानवी हैं और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत रवि के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ हमने चुना है। आवाजें गीता दत्त और साथियों की। फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: दोस्तों आज की एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को और इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। तो आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे। आप सभी जुड़िएगा विविध भारती से और इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो ये थी हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और आइए अब सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में फिल्म CID का गीत। गीतकार जानिसार अख्तर संगीतकार OP नैयर।

0: प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी दोस्तों, बताइए कैसे हैं आप लोग।
1: अरे भाई, आज तो हम किसी विशेष यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो अच्छे ही होंगे और तैयार भी हैं आप, है ना?
0: हाँ, आज सुरीला

पहला सफर एक ऐसा सफर होगा जो एक ऐतिहासिक यात्रा बन जाएगा, है ना। आज इस सफर में हम होंगे, आप होंगे और साथ में होगा हमारा प्यारा सा साथी, हमारा रेडियो, हमारा ट्रांजिस्टर या हमारा मोबाइल, जिस पर न्यूज ऑन AIR ऐप हम डाउनलोड कर विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे, है ना। एक ऐसा साथी जो हमारे लिए देश विदेश की ताजा खबर, मौसम की जानकारियां, सरकारी नीतियां, संगीत, नाटक, हास्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां और भी न जाने क्या क्या मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाता है। तो आज सुरीला सफर हमारे इस प्यारे साथी के साथ हम पूरा करने वाले हैं। सचमुच आज का ये सफर में हम होंगे, आप होंगे और होगा हमारा प्यारा साथी, हमारा रेडियो। तो बताइए, तैयार है ना आप हमारे साथ चलने के लिए? मुझे पता है आप बिल्कुल तैयार हैं। आज का टेक्स्ट भी हम आपको पढ़ देते हैं ताकि ये सफर और आसान हो जाए और इस पूरे सफर के दौरान आज हम इन्हीं बातों पर अपना और आपका ध्यान रखेंगे, ध्यान केंद्रित भी करेंगे। तो आज का हमारा टेक्स्ट है कि आज कुछ ऐसे गीत जिन्हें सुनकर हम ठिटक गए हों। आप भी बता सकते हैं वो कौन से गीत थे जिन्हें सुनकर आप ठिटक गए, हमेशा और आज भी ठिटक जाते हैं या सिहर जाते हैं या सहम जाते हैं या आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं या आप खिलखिला उठते हैं या आप मजा महसूस करते हैं, बहुत ही प्यारापन महसूस करते हैं किसी गीत को सुनकर। उन सभी गीतों का जिक्र कम से कम शब्दों में आप कर सकते हैं, हाँ वो गीत जो हमारी जिंदगी से जुड़ गए हो। तो आज सुरीला सफर भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर के गानों और गायकों का सफर होगा, क्योंकि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर हम आज बात करने वाले हैं। आज स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की क्या भूमिका रही, आपके जीवन में रेडियो क्या महत्व रखता है, रेडियो का महत्व क्या है, रेडियो का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय विकास में रेडियो प्रसारण की भूमिका क्या है, भारत के राष्ट्रीय प्रसारक आकाशवाणी ने ऐतिहासिक और अतुल्य योगदान दिया है, क्या है वो योगदान, बस आज सुरीला सफर इन्हीं खास बातों पर। तो आज के शब्द तो आपने नोट कर ही लिए हैं जिन पर हमने आज के गीत चुने हैं। आज के कुछ शब्द हैं बाबुल, वंदे, बरस, गुलबदन, प्यार, बेवफा, मन, आ जाओ, दाग, मुहे, हृदय और दुल्हनिया। तो ये हैं आज के शब्द जिन पर हमारे साथियों ने यानी आपने गीत लिखकर भेजे हैं और बहुत सारे गीत इन शब्दों से मेल खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा और सुरीला सफर इस गीत के साथ।

यह अवस्थी केएल सहगल की और फिल्म का नाम था स्ट्रीट सिंगर। पारंपरिक गीत रचना थी और संगीतकार थी आरसी बोराल। इस आवाज को भला हम कैसे भूल सकते हैं, और मुझे लगता है, हमें लगता है कि हमारे श्रोता भी इस आवाज को सुनना चाहते थे कार्यक्रम की शुरुआत में। हमारे कई श्रोताओं ने लिखा भी है कि आज तो भाई ये गाना जरूर बजने वाला है, बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए। तो जब रेडियो की बात हो, रेडियो की शुरुआत हो और केएल सहगल साहब की आवाज न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक समय ऐसा था जब हर कार्यक्रम में केएल सहगल साहब गूंजते थे और कुछ कार्यक्रमों में तो कुछ आकाशवाणी के केंद्रों में तो केएल सहगल साहब का गीत आखिर में जरूर बजता था, और उस गीत को सुनने के लिए न जाने कितने लोग उस आकाशवाणी केंद्र को सुनना पसंद करते थे। आपको भी वो याद ताजा होगी। फिलहाल हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं उनका मैं वाचन करती हूं, उनके संदेशों का। आप लिखते हैं कि रेडियो केवल सूचना और मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक अंतरंग और भावनात्मक साथी है। ये दृष्टिहीन होने के बाद भी शब्दों के माध्यम से मस्तिष्क में सुंदर चित्र उकेरने की क्षमता रखता है। दृश्य श्रव्य माध्यमों के इस युग में रेडियो की खूबी यह है कि यह केवल ध्वनि पर निर्भर है। जब उद्घोषक अपनी गर्म जोशी भरी आवाज में श्रोता से बात करता है तो एक ऐसा आभासी जुड़ाव महसूस होता है मानो वो सीधे दिल से दिल तक पहुंच रहा हो। ये वो माध्यम है जो हमें बांधता भी है और आजादी भी देता है। रेडियो हमारा जीवन संगीत है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे या अब के बरस भेजो भैया कुछ गाने, इस तरह के आपने लिखे हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत सारे गीत आपकी पसंद से आज बिल्कुल मेल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के कार्यक्रम का इंतजार है, मंदाकिनी जोशी की आवाज में मैं गाने सुनने को तैयार हूं। नहीं भाई, हमारी आवाज में कोई गाना आप सुनना नहीं सुन पाएंगे। आज आप बड़े बड़े कलाकार जिन्हें हम बचपन से सुनते आए हैं उन कलाकारों को सुनना पसंद भी करेंगे और सुनेंगे भी। एक श्रोता लिखते हैं कि पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने भी रेडियो खरीदा था और रेडियो पर के एल सहगल के गाने वो सुना करती थी, और वही भारतीय प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति कहती हैं कि वे बचपन में रेडियो पर लता जी और मन्ना डे के गाने सुना करती थी और गुनगुनाया करती थी, और रेडियो से बहुत कुछ सीखा उन्होंने। पहले रेडियो ही मनोरंजन का साधन था और दूसरा विकल्प नहीं था, प्राय सभी के घरों में दिखता था, और आज मोबाइल ऐप आ गया है लेकिन आज भी कार्यक्रमों को उसी अंदाज में सुना जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा मुझे आपने शुभाशीष दिया, और लिखते हैं कि यथानाम तथागुण को सार्थक करने वाली आप, अपनी स्वर लहरियों के साथ जो सुंदर संगीत की गंगा बहेगी उसका आनंद ही अलग है। मंदाकिनी में डूबते उभरते कब समय निकल जाएगा पता ही नहीं चलता। सभी श्रोताओं के विचार सुनना भी कर्णप्रिय लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी इतना स्नेह देने के लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के संगीत में सुरीला सफर में शामिल सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, आज के दिन का खास इंतजार है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नित नवनीत नवकल्पना नवरू रूप से सज्जित इबारत आज नई दिशा इंगित कर रही है। शैशव काल से उत्तरार्ध के सफर में बेतार वाणी आकाशवाणी का अवदान अतुलनीय है। सामयिक, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर चुकी आकाशवाणी आज तकनीकी तब्दीलियों में भी ताल से ताल मिलाकर चैतन्य ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है। संगीत प्रसारण से हिन्दी प्रसार उल्लेखनीय अवदान है। देश की एकता अखंडता अक्षुण रखने में आकाशवाणी आज भी घर घर में है, और नव चैतन्य जागृत करती मधुर संगीतमय सफर वाकई जोशीला रहेगा। नव चैतन्यता जागृत करती मधुर संगीतमय सफर वाकई जोशीला रहेगा, क्या बात है। आपने कितने सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी है, शुक्रिया, मेहरबानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हेमंत कुमार का संगीत है और बंकिम चंद्र की ये रचना है, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है आनंद मठ।

जी तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज रेडियो प्रसारण दिवस है, आज रेडियो के सभी दीवाने श्रोताओं दोस्तों के लिए बहुत खुशी भरा दिन है। मेरे पापा रेडियो के बहुत शौकीन थे, घर में लंबे साइज वाला रेडियो जिसमें हरे रंग की लाइट वाला वॉल्व होता था, हम सभी परिवार वाले बड़े चाव से सुनना करते थे। 2001 में जालंधर रेडियो के FM स्टेशन पे फोन इन प्रोग्राम में मेरा बहुत बार फोन लगा। विविध भारती के हेलो फरमाइश में 4 बार अपनी फरमाइश फोन लगाकर पूरी कर चुका हूं। तकरीबन अब 23 साल हो गए हैं विविध भारती पे फोन नहीं लगा, लेकिन कोशिश अभी भी जारी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह द्वारा रचित कालजई ठुमरी बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए, ये ठुमरी जो अक्सर राग भैरवी में गाई जाती है, नवाब शाह द्वारा लखनऊ से निर्वासन के दौरान लिखी गई, जिसमें वे अपने शहर को दुल्हन की विदाई के रूपक के माध्यम से विदा कर रहे हैं। ये गीत केवल ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को दर्शाता है, जिसमें नैयर सांसारिक जीवन और पिया का देश आध्यात्मिक संसार का प्रतीक है। KL सहगल की फिल्म स्ट्रीट सिंगर और अन्य दिग्गज कलाकारों द्वारा गाए जाने के कारण ये गीत आज भी प्रासंगिक और भावनात्मक रूप से बहुत ही गहरा है। बहुत सुंदर, आपने उन पुराने दिनों की याद दिला दी जब इस गीत को सुना जाता था और आज भी उतनी शिद्दत के साथ हमारे रेडियो प्रेमी इस गीत को सुनते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि KL सहगल जी का ये गाना मेरे पिताश्री को बहुत पसंद था, सुबह 7 बजे खुलेगी सारे गीत प्रोग्राम अवश्य सुनते थे। ये गाना सुनकर मेरे पिताश्री की याद आ गई, अभी तो इस दुनिया में वो नहीं है, मेरे बचपन के दिन भी याद आ गए, जब ये गाना सुनता हूं पुराने जमाने में खो जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज खास राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के दिन सुरीला सफर प्रोग्राम में आपने कार्यक्रम का आगाज महान गायक कुंदलाल सहगल जी से किया, ये बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं भी वो आखिर में

केएल सहगल का गीत बजने वाला प्रोग्राम जरूर सुना करती थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस आवाज को आज भी एक लोकप्रिय रेडियो पर कार्यक्रम के अंत में बजाया जाता है। और एक श्रोता का कहना है कि कुंदन लाल सहगल की आवाज में गाई गई सदाबहार ठुमरी मूल रूप से अवध के नवाब द्वारा रचित है। इसे राग भैरवी के सुरों में पिरोया गया और ये गीत आज भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी तो आज का ये सफर कितना संगीत में बनने वाला है ये तो हम सभी जानते हैं। और आज हम आपसे सिर्फ दो सवाल नहीं करने वाले हैं दोस्तों, आज पूरे सफर में हम आपसे बातचीत करेंगे, दुनिया भर के सवाल करेंगे और आप लगातार हमें जवाब देते रहेंगे। क्यों है ना, आज का सफर तो ऐसा ही होने वाला है भाई। तो चलिए आज हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने किस उम्र में रेडियो सुनना शुरू कर दिया था और क्या अब तक आप लगातार वो रेडियो सुन रहे हैं। और इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा गीत आपने रेडियो पर सुना अपने जीवन में।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज रेडियो प्रसारण दिवस है, आज रेडियो के सभी दीवानी श्रोताओं के लिए बहुत खुशी भरा दिन है और आज का दिन सभी को बहुत बहुत मुबारक। और एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं सीधे दिल तक पहुंचती है, रेडियो उन्हीं आवाजों का नाम है जो अनजान होकर भी अपना सा लगता है, शायद इसीलिए उसके साथ बिताया हर पल एक मीठी याद बन जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का टेक्स्ट बहुत ही भावुक करने वाला है, मैं उत्सुक हूं कि आज के शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर रेडियो की भूमिका के बारे में जानने के लिए भी मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन से ही रेडियो सुन रहे हैं जिसमें विविध भारतीय सेवा तो भारतीय संस्कृति और शुद्ध मनोरंजन का एक जीवंत प्रतीक है। आज के इंटरनेट और डिजिटल युग में भी विविध भारती अपनी सादगी, प्रामाणिकता और सुरीलेपन के कारण करोड़ों दिलों पर राज कर रही है। भूले बिस्ते गीत, सुरीला सफर, सखी सहेली और पिटारा जैसे कार्यक्रम मेरे सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीले सफर को हर घर तक पहुंचाने में आप सभी रेडियो उद्घोषकों की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी ने अपनी जादुई आवाज से न सिर्फ हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाया बल्कि पूरे परिवार को एक साथ बैठकर रेडियो सुनने की एक अनूठी और बेहद खूबसूरत संस्कृति भी दी है। आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये खास दिन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ईश्वर करे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और सभी साथी उद्घोषक दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि आप लगातार आज इस सफर में हमारे साथ हैं और हमारे साथ है हमारा प्यारा साथी रेडियो। तो चलिए पुराना वो समय खंगालते हैं जब इस गीत को हम अक्सर सुना करते थे या हमारे माता पिता ने सुना होगा, हमारे दादा दादी ने सुना होगा। आपने भी सुना है कि नहीं बताइएगा मुझे इस गीत को सुनने के बाद। अच्छा, मैं आपकी सुविधा के लिए बता देती हूँ कि लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है प्रेम पत्र, राजेंद्र कृष्ण की रचना और सलिल चौधरी की धुन।

जी आपको कुछ याद रहा? बताइए, ये गाना आपने कभी सुना था? याद कीजिए, आपने आपके माता पिता ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने, आपके घर के अन्य सदस्यों ने इस गीत को जरूर सुना होगा। अगर सुना है तो बताइएगा। फिल्म प्रेम पत्र का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने कब सुना था और आपको ये गीत कैसा लगा था? हमारे श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारतीय जनसंचार इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। 23 जुलाई 1927 को जब मुंबई से पहला व्यावसायिक रेडियो प्रसारण शुरू हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि मुट्ठी भर तरंगे एक पूरे राष्ट्र की आवाज बन जाएगी। आजादी की लड़ाई में रेडियो केवल सूचना प्रसारित करने का साधन नहीं था, बल्कि वो क्रांति की गुप्त आवाज थी। जब ब्रिटिश हुकूमत ने अखबारों पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी, तब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित कांग्रेस रेडियो ने देशवासियों पर काफी खबरें आगे तक पहुंचाई थी और हमें सच्ची खबरों के बारे में पता चला था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाले सुरीला सफर कार्यक्रम में एक गीत जो अवश्य ही सुनाई देता है, बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए, स्वर्गीय कुंदनलाल सहगल जी की आवाज में वो आज सुनने को मिल जाएगा। बिल्कुल, आपको वो गीत सुनने को मिल भी गया है। एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो के बिना हमारा लोगों का जीवन बिल्कुल अधूरा है। और हां, एक श्रोता ने कहा है कि सबसे ज्यादा गाना मैंने रेडियो पर ओल्ड इज गोल्ड सुना है। रफी साहब, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश जी और गायकों की आवाज में मैं गीत सुनता हूं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जब से रेडियो की समझ आई, आप पूछ रही हैं कि हमने रेडियो कब से सुना है, जब से रेडियो की समझ आई तब से ही सुना जा रहा है। एक श्रोता कहते हैं कि मैं छोटा था तब स्कूल से आकर तुरंत रेडियो ऑन करके गीत सुनता था, तब मुझे सुनजा आ ठंडी हवा। अच्छा, आपने सुनजा जी हाँ, वो है सुनजा आ ठंडी हवा, हाथी मेरे साथी का ये गीत आपको बहुत पसंद था। एक श्रोता लिखते हैं कि लाइसेंस युग से डिजिटल युग और रियल से अच्छा जो लगा रहता था एफएम ब्लूटूथ तक के रेडियो के सफर का साक्षी होने पर हमें गर्व है। बेतार आकाशवाणी एक चमत्कार से चरम शिखर तक अभी भी अपनी चमक बरकरार रखने में सक्षम है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये गीत हमें बेहद पसंद था रेडियो पर। अच्छा, हमने आपसे पूछा था कि आपने रेडियो में सबसे ज्यादा किस गीत को सुना है और आपको कौन सा गीत पसंद है। एक श्रोता कहते हैं कि हमने होश संभाला तब से रेडियो सुनना शुरू कर दिया, पर तब सिर्फ गीत सुनते थे। शायद 12 या 13 साल की उम्र थी, वो भी पापा की कारण से, पापा की वजह से उन गीतों का बड़ा शौक था उन्हें। शायद वो हमारे पास लगा शौक और आज तक वो जिंदा है और सदा रहेगा। एक श्रोता कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा बार रेडियो पर जो गीत सुना वो है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। एक श्रोता का कहना है कि मैंने 10 साल की उम्र से सुनना शुरू कर दिया और अभी मैं 64 साल का हो गया हूं। मेरी रुचि अनुरूप मेरे बच्चे बीवी का भी लगाव है, रेडियो का विकल्प हो ही नहीं सकता है। एक श्रोता कहते हैं कि 4 साल की उम्र से सुन रही हूं, रेडियो मेरे लिए मेरा हमसफर है। क्या बात है। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि 1995 से जब मेरे घर पर 2 सेल वाली रेडियो थी और रात में हवा महल हम सभी भाई बहन एक साथ बैठकर सुना करते थे, तब से रेडियो मेरा दोस्त है और आगे भी रहेगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम उम्मीद तो बहुत कुछ करते हैं रेडियो से और रेडियो ने हमारी हर उम्मीद पूरी भी की है। तो बताइएगा कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में, जैसा कि हमारे श्रोताओं ने कहा कि उन्होंने अपने यहाँ के जो केंद्र सुनाई देते हैं वहां पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए फोन किया था, क्या आपने विविध भारती के लिए कभी फोन किया या आपके जो लोकल स्टेशन लगते हैं वहां पर हेलो फरमाइश के लिए क्या आपने कभी कॉल किया? अगर कॉल किया तो किस उद्घोषक से आपकी बात हुई, क्या बात हुई, कौन सा गीत सुनना चाहा था आपने? याद कीजिए उन पलों को जो आपने रेडियो की दुनिया में अपने अनमोल पल दिए हैं। और साथ ही बताइएगा कि जयमाला, हवा महल जैसे कार्यक्रम जो बरसों से सुने जा रहे हैं, आपने कब से इन्हें सुनना शुरू किया था और क्या लगातार आप इन कार्यक्रमों को सुन रहे हैं? आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं प्यारा सा गीत जिसे सुनकर हम अक्सर कहते हैं ना कि खुश हो जाया करते थे या हम चहक उठते थे इस गीत को सुनने के बाद। ये गीत है फिल्म प्रोफेसर का, आवाज मोहम्मद रफी की, हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज।
1: तो आपको याद आया कि ये गीत आपने कब गाया था? क्या किसी महफिल में आपने इस गाने को गाया था या आपके लिए किसी ने गाया था? याद कीजिए वो पल जिंदगी के जब ऐसा कुछ घटित हुआ होगा और हमें लिख डालिए कि हाँ, ये गीत मैंने किसी खास कार्यक्रम में गाया था। और हम गाते भी हैं अक्सर, हमारे जहन में बहुत सारे ख्यालात, कल्पनाएं होती हैं। कई बार कोई गीत हमें किसी खास इंसान के लिए पसंद आता है, कई बार कोई गीत हम अपने लिए पसंद करते हैं। कुछ घटनाएं हमें अंदर तक आह्लादित कर देती हैं, कुछ घटनाएं, कुछ बातें, कुछ रेडियो के कार्यक्रम हमारी आंखों में आंसू ले आते हैं। ऐसे कौन से कार्यक्रम थे, आपने सुने होंगे जयमाला में, जब हम सैनिकों की बातें करते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति आकर जयमाला कार्यक्रम पेश करता है, तो आपको क्या लगा होगा? आपने क्या सोचा देश की रक्षा करने वाले उन सैनिकों के लिए? क्या कभी आपके मन में कोई विचार आया? रेडियो के जरिए क्या आपने अपनी बात कहने का कोई मौका ढूंढा? ये सभी बातें आज इस सफर में होने वाली हैं। आप अपना मन आज खोलकर रख दीजिए कि रेडियो की दुनिया आपके जीवन में क्या मायने रखती है। एक श्रोता लिखते हैं कि धन्यवाद, आज आपको बहुत बढ़िया इबारत और शब्दों को लेकर आपने हमारे प्रश्न आसान कर दिए हैं। जी बिल्कुल आसान है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि हमारे श्रोता हमारी बात को समझ पाए और हमसे जुड़ पाए, है ना? वही कोशिश हमारे साथ, और आप भी कोशिश करते हैं। देखिए ना, आज पूरा आपकी जिंदगी में जो रेडियो की महत्ता है उस पे आपने अपनी बातें लिख डाली हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ये आकाशवाणी है कि धुन से दिलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की सभी को शुभकामनाएं। सूचना, मनोरंजन और ज्ञान को घर घर पहुंचाने वाले सभी को, प्रसारकों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल आपको याद होगा, आप सुनते भी होंगे, आज भी हम भी ऐसा ही करते थे कि जब रेडियो की वो जो एसटी, जिसे हम सिग्नेचर ट्यून कहते हैं, बजने वाली होती थी, हम उठ जाते थे और वो धुन सुनना एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। आपको उस धुन को सुनना कैसा लगा, आप उस धुन को सुनकर क्या सोचते हैं? उसके बाद वंदे मातरम का गाना आता है, वो सब आपके लिए क्या मायने रखता है? ये सभी सुनने के बाद जीवन कैसा हुआ आपका, क्या अंतर आया जीवन में? ये सभी विचार आज आप रखने वाले हैं, है ना? आज सुरीला सफर में हम सभी ये बातें करने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की पीढ़ी भले ही पॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग एप्स की दीवानी हो, लेकिन जो जादू ट्यूनिंग नॉब को घुमाकर घरघराहट के बीच से एक साफ आवाज ढूंढने में था, वो आज की क्लिक संस्कृति में कहा, क्या बात है, बहुत सुंदर। जब हम शॉर्ट वेव में गाना ढूंढा करते थे, मीडियम वेव में गाना ढूंढा करते थे, बहुत सुंदर, आपने बहुत प्यारी यादें हमारे सामने साझा की है, रख दी है। आप लिखते हैं कि रेडियो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और जब तक इंसानी जज्बात और आवाज का रिश्ता कायम है, रेडियो हमेशा हमारे दिलों की धड़कन बनकर गूंजता रहेगा। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत का पहला मनभावन भाग कह रहा है कि लिख डालो वो सुरीले सुहाने सुनहरे भावभीने गीत, जिन्हें सुनकर हम चकित होकर रुक जाते हैं। जी हाँ, मंदाकिनी जी के चुने हुए शब्द लेकर ज्यादा से ज्यादा गायकों का समावेश करके गीत चुन लेना, कहना मान तो लिया है, अब देखते हैं कितने नगमे सफल हो पाते हैं। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ सफल और असफल होने का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम मिलजुल कर इस राह को आसान करने का है, जो आप कर भी देते हैं। और आपने संदेश लिखा भी है, बहुत अच्छा, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, और यकीनन यही गीत हमने भी चुने हैं, बहुत सारे गीत हमारे गीत से मिलते भी हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो की आवाज अपने पैर में गीतों के घुंघरू बांधकर कब मेरे मन पर बस गई, ये मैं जान ही न सकी। जब रेडियो सुनना शुरू किया था तो क्या जानती थी कि ये आवाज एक सच्चे हमसफर की तरह दिन रात साथ बन जाएगी। आसमान से ऐसी ही सतरंगी आवाजें तरंगों पर सवार होकर जमीन पर उतरती हैं और साथ लाती हैं रूहानी मनोरंजन की सौगात। इन सुरीली धड़कनों ने जब हर घर में अपना वजूद कायम किया तो नाम मिला विविध भारती। विविध भारती की खासियत यह है कि उसके बड़े से बड़े महल में सभी के लिए कुछ न कुछ अनमोल मोती के नगीने छिपे हैं। कौन सा नगीना कब आपके मन आत्मा पर जाकर जादू कर जाएगा, आप कह नहीं सकते। आज विविध भारती हम सभी की सांसों का हिस्सा है।

तो रेडियो का रिसर्च किया, फिर उन दिनों कई उद्घोषकों को मैंने सुना और उसके बाद उन उद्घोषकों को मैंने यूट्यूब पर सर्च भी किया। क्या बात है आपकी उत्कंठा सर आंखों पर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, इसलिए बधाई और शुभकामनाएं तो देने का दिन बनता ही है। एक श्रोता लिखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की भूमिका के संदर्भ में बयान करना हमारे लिए तो संभव नहीं है क्योंकि हम उस दौर के नहीं है, लेकिन दादी नानी से कहते हुए बहुत कुछ सुना था कि चोरी छिपे रेडियो पर प्रसारण सुना जाता था। मेरे जीवन में रेडियो की भूमिका रही। लेखन में स्पीड बढ़ाने के लिए समाचार और गानों को लिखकर अभ्यास किया गया। उस दौर में जब सब हंसते थे लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, पर मेरी स्पीड लिखने में बहुत तेज थी, वो आज भी है। क्या बात है, आपने कितनी बड़ी बात लिख दी है कि रेडियो से आपने क्या सीखा है, जो एक स्टूडेंट के लिए कितना जरूरी होता है, यानी अपनी राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग को साफ और सुथरा बनाना, साथ ही अपनी स्पीड तेज करना। बहुत सुंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में फिल्म छाया का गीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सलील चौधरी की धुन। ये गीत सुनने के बाद भी आपका मन क्या कल्पनाओं की उड़ान में उड़ान भरता था, बताइएगा। कल्पनाओं की उड़ान कैसी होती थी आपके इस गीत को सुनने के बाद। हमें लगता है बहुत सुंदर गीत, जिसे सुनकर हमने बहुत कुछ कल्पनाएं की होंगी।

हमारे श्रोता का लिखना है कि रेडियो हमारे लिए बहुत मायने रखता है और बहुत बहुत आज का दिन मुबारक। आज के द्वारा सुरीला सफर पेशकश का आनंद लिया जा रहा है और गीत भी कर्णप्रिय है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहले की रेडियो शुरू होने की धुन बहुत मोहक थी, अच्छा जो जिसे हम सिग्नेचर ट्यून कहते हैं, संकेत ध्वनि, उसके बारे में आप लिखते हैं कि रेडियो पहले ही खोलकर रख लेती थी, पहले एक सीटी बजती थी और उसके बाद धुन बजना शुरू होती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि आप तो आज सभी श्रोताओं को एकदम खुश कर दे रही हैं, सभी के कमेंट शामिल कर रही हैं, आपको सैल्यूट है। आप सभी को भी सैल्यूट है कि आप भर भर कर अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो पर गीत सुनते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं, इसलिए मेरे लिए रेडियो बहुत खास है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ये गाना सबसे पहले मैंने रेडियो में सुना था, उसके बाद ये गाना आज भी मुझे याद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम रेडियो तब से सुन रहे हैं जब हमारे घर में रेडियो नहीं था और पॉकेट रेडियो खरीदने के लिए गुल्लक में पैसे जोड़ते थे। जब मेला आएगा तब उस मेले से जाकर रेडियो लेकर आता था और कभी कभी पैसे कम पड़ जाते थे तो क्योंकि घर के हालात थोड़े से बिगड़े हुए थे, जिसने मैंने खुद ही सुधारा और बाद में बहुत सारे प्रोग्राम विविध भारती के सुने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव यू जिंदगी डियर जिंदगी ये गाना हमने रेडियो पर बहुत बार सुना है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे आपका अच्छा बोलना बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रारंभिक धुन रोमांचित कर देती थी किंतु जब भी बिजली कड़कती थी बड़े लोग रेडियो बंद कर दिया करते थे, बोलते थे कि रेडियो जल जाएगा, ऐसा कहा जाता था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बचपन से ही रेडियो सुन रहा हूं और अभी मेरे घर में हर कमरे में छोटे बड़े लगभग 13 रेडियो हैं। बचपन में पिताजी ने फिलिप्स का रेडियो लिया था जिसे हम सब पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर प्रोग्राम सुनते थे और विविध भारती मेरा मनपसंद चैनल है। सुबह 6 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक कोशिश करते हैं कि सभी कार्यक्रम सुने जाएं और हम उन सभी कार्यक्रमों का आनंद भी लेते हैं। वहीं हमारे एक श्रोता ने कहा है कि आज का ये कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आ रहा है और आज के इस कार्यक्रम को हम अंत तक सुनेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो के प्रति मेरी दीवानगी का ये आलम है कि मैं आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है और आकाशवाणी भोपाल के दर्शन कर चुका हूं। 1981 में 17 वर्ष की आयु में मैंने आकाशवाणी लखनऊ के दर्शन किए, वहां के तत्कालीन लोकप्रिय समाचार वाचक से मैंने मुलाकात की और आकाशवाणी लखनऊ में भी जाकर मैंने वहां के कई लोगों से मुलाकात की और उनका शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्या बताऊं। आकाशवाणी लखनऊ को देखने का रोमांच आज भी मेरे दिमाग में जीवित है। कभी मौका मिला तो मैं मुंबई आऊंगा और विविध भारती देखूंगा और परिवार के प्रत्येक सदस्य से मिलना पसंद करूंगा। जी तो सुरीला सफर में अब हम आ गए हैं इस सोपान पर कि जहां हम दत्ताराम के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज हमारे प्रिय गायक मुकेश की और फिल्म का नाम है श्रीमान सत्यवादी।

0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आज सभी को हम शुभकामनाएं दे रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। इसका जितना हम लिखें उतना ही कम है। आज इस कार्यक्रम में हम रेडियो में जो कार्यक्रम आ रहा है उससे सुनना पसंद करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हर साल 23 जुलाई को आज का दिन मनाया जाता है और ये दिन भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की याद दिलाता है, जब 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे, जो कि अब मुंबई स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने देश का पहला संगठित रेडियो प्रसारण किया था। इतिहास और सफरनामा पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से निजी कंपनी IBC द्वारा शुरुआत हुई थी और ऑल इंडिया रेडियो AIR द्वारा इसे अपने नियंत्रण में लेने के बाद 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी कर दिया गया। विविध भारती साल 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई जो घर घर में लोकप्रिय बनी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इस युग में जब हर कोई स्क्रीन से चिपका हुआ है तब भी रेडियो की मिठास और उसकी आत्मीयता कहीं न कहीं गूंजी रही है। मैं रेडियो को केवल एक संचार माध्यम नहीं बल्कि अपने जीवन का एक अनमोल हिस्सा मानती हूं। ये वो साथी है जिसने बचपन से जवानी तक मेरे हर पड़ाव को संगीत में बनाया, ज्ञान से भरपूर किया और भावनाओं को शब्द दिए। वे दिन जब शाम होते ही घरों में रेडियो की आवाज गूंजती थी, BBC की खबरें, विविध भारती के मधुर गीत और हवा महल की कहानियां, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये वो धागा था जिसने पूरे समाज को एक साथ जोड़े रखा। बारिश की रातों में बिजली गुल होने पर भी ट्रांजिस्टर से गूंजता कोई पुराना नगमा माहौल को जीवंत कर देता था। रेडियो से कोई चेहरा नहीं दिखता लेकिन आवाजों की आत्मीयता रिश्तों जैसी है। समय कितना भी बदले रेडियो का जादू हमेशा जीवित रहेगा, धड़कता रहेगा उन दिलों में जो इसे सुनते नहीं महसूस करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस न केवल तकनीकी प्रगति का उत्सव मना रहा है बल्कि रेडियो की उस अटूट शक्ति को भी दर्शा रहा है जो एक विविधतापूर्ण राष्ट्र को सूचना पहुंचाने, शिक्षित करने, मनोरंजित करने और देश को एकजुट रखने में सक्षम है। भारत जैसे जैसे डिजिटल युग में आगे कदम बढ़ा रहा है, सार्वजनिक सेवा प्रसारण के सिद्धांत महत्वपूर्ण बने हुए हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि रेडियो भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण माध्यम बना रहेगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज पहले तो रेडियो का भी लाइसेंस लेना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस में जाकर हम ये काम करते थे। बचपन से ही रेडियो सुनते आ रहे हैं। 1970 के बाद से क्रिकेट की कमेंट्री सुनते आए और 1982 के बाद टीवी जब आया तो तब भी हम विश्वसनीय साधन रेडियो को ही माना करते थे उन समाचारों को सुनने का। जी तो आज बहुत सारे सवाल हम इस सफर में कर तो रहे हैं लेकिन सफर का वक्त भी तो खत्म होने वाला है, तो चलिए आपके विचार हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे गीत संगीत के माध्यम से। अब सुन लेते हैं ये गीत, हेमंत कुमार की आवाज, फिल्म का नाम 20 साल बाद, शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार की ही धुन है। आपने इस गीत को बहुत बार गुनगुनाया होगा, याद करिए कब आपने रेडियो पर ये गीत सुना था और कब ये दिल आपके दिल की धड़कन बन गया ये गीत।
1: करार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट।

जी जी डरिए मत, हम अभी कहीं नहीं गए हैं, देखिए लौट आए हैं फिर, क्योंकि अभी थोड़ा सा सफर में वक्त और है, थोड़ा और आगे हम चल सकते हैं। हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे। जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। इनसे बातचीत करेंगी रेडियो सखी ममता सिंह। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करने वाले हैं, तो आप सभी जुड़े रहिएगा विविध भारती से। और इसे आप अपने रेडियो रेडियो सेट पर सुन सकते हैं और मोबाइल ऐप पर, जो कि न्यूज ऑन AIR ऐप है, उस पर जाकर भी आप सुन सकते हैं। तो बने रहिएगा विविध भारती के साथ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि पूरे मोहल्ले में सबसे पहले रेडियो हमारे घर पे आया था। सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त समाचार सुनने के लिए सभी लोग हमारे घर आया करते थे। वो अभी भी थोड़ा बहुत हमें याद है। खास मौके पर विशेष प्रसारण, आपदा संबंधी जानकारियां और मनोरंजक कार्यक्रम, सब कुछ उसके द्वारा मिलता था। बाकी के समय रेडियो बजता रहता था, तब पुराने गीत से हम बहुत कुछ सीखा करते थे। बहुत सारे गाने हमें आज भी कंठस्थ हैं। बड़े हुए तब पढ़ाई के वक्त भी छोटा रेडियो चुपके से रख लेते थे। मुझे याद है कि मुझे और दीदी को डांट पड़ा करती थी कि हम रेडियो चालू करके सो जाते हैं, और फिर भी हम नहीं मानते थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर की शुरुआत बहुत ही सुरीली है, वर्षा ऋतु है और बरसात के गाने सुनने को मिलेंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। भाई आज तो हम कुछ और ही बरसा रहे हैं, आपने सुना होगा कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और रेडियो का हमारे जीवन में, हमारी यात्रा में, हमारी जीवन यात्रा में क्या योगदान है, इससे हम सभी परिचित हैं और रेडियो हमारे लिए हमेशा बना रहेगा। रेडियो की हर वक्त ये भूमिका सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, ऐसा हमारे श्रोता मानते हैं। तो चलिए आखिरी सोपान पर हम पहुंच चुके हैं, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गीत। अक्सर जब हम बहुत उदास निराश रहे जिंदगी में, तो इस गीत को हमने कई बार गुनगुनाया। SD बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी की रचना, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम नया जमाना। याद कीजिए वो वक्त जब आप भी कहीं नाराज थे किसी से और आपने इस गीत को मन ही मन गुनगुनाया था या गाया भी होगा।

जी हाँ, देखा जाए तो रेडियो का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये दूर दराज के इलाकों में बिना इंटरनेट या बिजली के भी जन जागरूकता फैलाने, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जानकारी देने और स्थानीय संस्कृति को सहेजने में अहम भूमिका निभाता रहा है और निभाता रहेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि हम रेडियो की दुनिया में कायम रहेंगे, आज का ये सफर समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दे दें अब इजाजत। फिर मिलूंगी, नमस्कार।

सभी सुनने वालों को ऋषि कपूर का प्यार भरा नमस्कार आदाब। दुनिया बखूबी जानती है कि मेरे फादर राज कपूर साहब को संगीत की गहरी समझ थी। यही कारण है कि उनकी फिल्मों के एक एक गीत की कॉम्पोजिशन लेके रिकॉर्डिंग तक गीत की तमाम बारीकियों में उनकी हिस्सेदारी रहती थी। यही वजह है कि उनकी फिल्मों के गीत आज भी दिल को छू लेते हैं। संगीत की दुनिया में उनकी फिल्मों के गीतों का एक खास मुकाम है। यूं तो सभी साजों से उन्हें प्यार था, पर अकॉर्डियन से उन्हें कोई खास लगाव रहा। कई फिल्मों में आप उन्हें अकॉर्डियन बजाते हुए देख सकते हैं। भोपाल के संजीव सचदेव जी ने उनके अमर गीतों में से 12 चुनिंदा गीतों को अकॉर्डियन पर बजाया है। बहुत अच्छा बजाया है। सभी गीत उम्दा बजे हैं और मुझे पुरानी सुनहरी यादों की तरफ खींच ले गए हैं। संजीव जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इन गीतों का पूरा लुत्फ उठाएंगे।

0: aqui, Sahelin.
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आज है 23 तारीख, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: अनजान
1: सलाम, सबका सलाम। आज इस अवसर पर विशेष सखी सहेली में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी जी को। आप राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में आपका बचपन बीता, रेडियो के लगाव ने उन्हें आज इस ओहदे तक पहुंचाया। तो चलिए हम सभी मिलकर मीनाक्षी जी का विविध भारती के सजीव प्रसारण में हम स्वागत करते हैं और इस प्रोग्राम को हम फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं और फेसबुक लाइव की जिम्मेदारी संभाली है जुबैर खान हमारे प्रोड्यूसर और अनुश्री पाठक इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर। मीनाक्षी जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: धन्यवाद ममता जी।
1: कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा लग रहा है विविध भारती स्टूडियो में आके, और आज प्रसारण दिवस के अवसर पर आपने मुझे यहाँ बुलाया है। बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि विविध भारती के सभी श्रोताओं से मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ आज इस प्रोग्राम के जरिए।
1: जी
2: धन्यवाद।
1: तो भारतीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आप सभी श्रोताओं को संदेश क्या देना चाहेंगे?
2: सबसे पहले तो विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, और विविध भारती की पूरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। और 23 जुलाई 1927 को हमारे देश में पहला प्रसारण शुरू हुआ था रेडियो के माध्यम से मुंबई सिटी में।
1: जी।
2: और प्रसारण दिवस हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि वैसे तो आज संचार के कई माध्यम है, हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है,
1: जी,
2: फिर भी मुझे लगता है कि रेडियो की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। रेडियो एक बहुत ही सस्ता, सुंदर और भरोसेमंद साथी है सबका। तो आज प्रसारण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगी कि इस ब्यूटीफुल मीडियम से आप सभी जुड़े रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसकी ताकत से अवगत कराएं। और आज इस प्रसारण दिवस पर रेडियो के लिए मैंने कुछ 2-3 लाइंस बनाई है, वो मैं बताना चाहूंगी।
1: जी जी।
2: डिजिटल की भीड़ में आज भी अपना एक मुकाम है।
1: क्या बात है।
2: गाड़ी से लेकर मोबाइल तक अपनी एक पहचान है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
2: स्क्रीन से थकी आंखों को देता ये आराम है। पुराना होकर भी रेडियो आज भी जवान है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और देखिए ना, हमारे श्रोता भी कितने उत्साहित हैं, उमंग में डूबे हैं। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की बाढ़ सी आई है, हमारे श्रोता ढेर सारी बातें लिख रहे हैं और लगातार सभी श्रोता आपका स्वागत कर रहे हैं खास तौर से। तो आप क्या कहेंगे स्वागत के लिए?
2: बस मैं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि वो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, रेडियो के थ्रू भी और फेसबुक के थ्रू भी।
1: जी।
2: वो यहाँ पे संदेश भेज रहे हैं और मैं ममता जी से कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के संदेश इस प्रोग्राम में शामिल करें वो।
1: तो अगर हम सिलसिला शुरू करेंगे तो शायद हमें खामोश रहना पड़ेगा, लेकिन हम बीच बीच में टिप्पणियां श्रोताओं के शामिल करते रहेंगे। देखिए ना, हमारे एक सुधी श्रोता है जिन्होंने लिखा है, कार्यनिष्ठा, कुशल प्रबंधन और कलात्मक सोच का अद्भुत संगम। हमारी महानिदेशक अपनी निष्ठा और प्रतिभा से हर कामकाजी महिला को प्रेरित करती हैं। परिवार और करियर का अद्भुत संतुलन, कुशल नेतृत्व और एक चित्रकार की संवेदनशील सोच। हमारी महानिदेशक जी केवल एक बेहतरीन प्रशासक ही नहीं बल्कि हर एक के लिए एक प्रेरणा पुंज है। ये आपको निजी तौर पर भी जानते हैं मेरे ख्याल से।
2: जी हाँ, जी हाँ।
1: तो इन्होंने आपके लिए ये खास बात लिखी है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज का ये जो समय है डिजिटल है, तो आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में भी रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है, आप कैसे देखती हैं?
2: जी हाँ।
1: खासतौर से आकाशवाणी की प्रासंगिकता के बारे में क्या कहेंगी?
2: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है क्योंकि आज हमारे पास जन संपर्क के लिए बहुत सारे मोड्स हैं, कम्युनिकेशन के मीडियम है, फिर भी रेडियो की इम्पोर्टेंस है आज के दौर में भी, विशेषकर आकाशवाणी की।
1: जी।
2: तो इसमें मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूंगी कि जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, भरोसे की बात है, मुझे लगता है आकाशवाणी पर जो भी इन्फॉर्मेशन और न्यूज जाती है
1: जी,
2: उस पर करोड़ों लोगों का भरोसा है। साथ ही आकाशवाणी ने हमेशा हमारी भारतीय संस्कृति और कला के संरक्षण में बहुत काम किया है और आगे भी हम कर रहे हैं। हमारे जो म्यूजिक कंसर्ट्स और जो हमारे विविध कार्यक्रम है, जैसे कि विविध भारती हमारा चैनल है
1: जी, जी,
2: तो हमारे जो कार्यक्रम में जो विविधता है वो पूरे देश के सभी लोगों को एक साथ पिरोने का काम करती है, एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। और स्वतंत्रता से लेकर आधुनिक भारत के विकास तक आकाशवाणी ने हर दौर में सभी लोगों का साथ दिया है
1: जी।
2: तीसरी एक बात ये भी है कि जब भी कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होती है या कोई डिजास्टर वाली जो कंडीशन, भूकंप है, बाढ़ है, ऐसे में जो बाकी संचार के जो मीडियम है वो थोड़ा जल्दी ही बंद हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है
1: जी।
2: लेकिन रेडियो एक ऐसा साथी है जो हमेशा बना रहता है सभी के साथ, और इसके थ्रू कई बार ऐसी सिचुएशन में बहुत ही जरूरी मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है
1: जी।
2: और जनता तक जो बात पहुंचनी है वो पहुंचाई गई है
1: जी।
2: तो आकाशवाणी की प्रासंगिकता तो हमेशा बनी रहेगी मुझे लगता है
1: जी। बिल्कुल सही कह रही हैं। और अगर हम इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो कुछ यूं कि रेडियो जैसे हमारा साथी बन जाता है, विविध भारती खास तौर से कभी दादी बनके, कभी नानी बनके, कभी माँ, कभी बहन, भाई, भाभी बनके आपका साथ निभाती है। दुख के पलों में वो फाहा लगाती है और खुशियों के पल में जैसे लगता है कि खुशी मना रही हमारे साथ। कोई एक गाना बजता है जब विविध भारती से और हमारे श्रोता कहते हैं कि जैसे लगता है कि ये तो आज हमारे घर ये खुशी का मौका है और आपने ये गाना बजाया तो हमारा साथी बन गया। तो जाहिर सी बात है हम सबके लिए चुनौती भी होती है, खुशी भी होती है। तो अब जिंदगी ही कुछ ऐसी है कि जिंदगी में जब गीत संगीत का साथ न हो तो फीकी सी अधूरी सी लगती है। तो यहाँ पर एक गाना बनता है, बताइए कौन सा गाना सुना है?
2: बिल्कुल
1: जिंदगी प्यार का गीत
2: या,
1: है।
2: या, बहुत सुंदर, आपने मेरी पसंद पहचान ली ममता जी। हाँ?
1: सुनते हैं
2: जरूर से प्ले करिए।
1: सौतन फिल्म का ये गाना।

0: आज विविध भारती के स्टूडियो में मीनाक्षी सिंघवी जी हैं, जो उप महानिदेशक हैं आकाशवाणी मुंबई की, और हमारे सारे श्रोता लगातार खुशी में शरीक हैं, इस उत्सव में शरीक हैं, लगातार टिप्पणियां आ रही। मीनाक्षी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो तकनीकी फील्ड से हैं, तो शुरुआती दौर में रेडियो मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और इन सब माध्यम से ही चलता था, फिर FM आया, फिर SMS का जमाना आया, फिर टेलीफोन, फोन इन रिकॉर्डिंग शुरू हुई, तो मीडियम वेव FM तकनीक में आप बताइए कि अंतर क्या है और आज FM इतना लोकप्रिय कैसे है, क्यों है, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपने श्रोताओं के लिए बताऊंगी कि रेडियो के शुरुआती दौर में जितने भी प्रसारण होते थे, ब्रॉडकास्टिंग होते थे, उसमें शॉर्ट वेव और मीडियम वेव ही चलते थे, और शॉर्ट वेव में हम जो सिग्नल होते हैं, हमारे रेडियो सिग्नल्स, वो काफी

0: लंबी दूरी तक यात्रा तय करते हैं क्योंकि आयनोस्फेयर से उसका रिफ्लेक्शन होके वो अर्थ सरफेस पे आते हैं। तो जो पहले इसमें ब्रॉडकास्टिंग होती थी, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक हमारे सिग्नल पहुंच जाते थे, जैसे रेडियो सिलोन या बीबीसी रेडियो उस समय जो चलते थे शॉर्टवेव पर ही थे। उसके बाद पैरेलली मीडियम वेव ब्रॉडकास्टिंग भी चलता था, उसमें भी जो सिग्नल्स है बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं। जैसे अगर आपने एक स्ट्रीट में एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाया है हाई पावर का, तो वो पूरे राज्य को कवर कर लेता है
1: जी।
0: लेकिन इन दोनों टेक्नोलॉजीज में एक इशू ये था कि जो आवाज की गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद आया एफएम, और एफएम ने तो रेडियो लिसनिंग का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल दिया
1: जी।
0: और एफएम में सबसे बहुत अच्छी चीज है कि आवाज की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, स्टीरियो ट्रांसमिशन हो पाता है, इसीलिए एफएम उसके बाद से कंटिन्यूसली लोकप्रिय होता जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि जो एफएम के सिग्नल होते हैं वो लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन से जाते हैं
1: जी।
0: तो 70 से 80 किलोमीटर का प्राइमरी रेंज रहता है नॉर्मली एफएम ट्रांसमीटर का, इसीलिए आपने देखा होगा कि हर सिटी में हमें नए एफएम ट्रांसमीटर को लगाना होता है
1: जी जी।
0: उसके बाद अगर मैं रिसीविंग साइड की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे रिसीवर्स कितने बड़े होते थे, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होके अभी बहुत मोबाइल फोन में हम सारे रेडियो चैनल सुन सकते हैं। और आज प्रसारण दिवस पे जब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो मुझे जरूर से मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि आज हमारा आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है जिस पर आप पूरे भारत के सभी आकाशवाणी चैनल जो कि विभिन्न भाषाओं में है, आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग उसका सुन सकते हैं
1: जी जी।
0: तो मैं आज इस दिन सबसे ये कहूंगी कि आप इस ऐप को जरूर से अपने फोन में डाउनलोड करिए और फिर आकाशवाणी का और विविध भारती के सभी प्रोग्राम्स का आप न केवल अपना देश, विश्व के किसी भी कोने से आप इसका आनंद उठा सकते हैं
1: जी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब देखिए ना श्रोता कैसे आनंद उठा रहे हैं, विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हुए हम पोस्टर डाला है और हमारे श्रोता लगातार आपके स्वागत के लिए बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, अपने जज्बात साझा कर रहे हैं और प्रसारण दिवस पर भी बहुत सारी बातें साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो से जुड़ी बचपन की कई यादें जिंदा हैं मन में। सुबह चित्रलोक सुनते सुनते दिन शुरू होता, फिर स्कूल की तैयारी, शाम को बिना का गीतमाला, रात में बेला के फूल जीवन का हिस्सा थे। पढ़ाई के समय भी रेडियो साथ रहता था, डांट और मार के बावजूद उससे रिश्ता कभी नहीं टूटा। मीनाक्षी जी, हम आपको यहां पर बताना चाहते हैं कि हम सब बचपन में ऐसे बड़े हुए हैं, रेडियो सुन के पढ़ाई किया करते थे। ये डांट वाली बात से हमें याद आया कि हमें भी डांट पड़ी है रेडियो सुनने के लिए। एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते थे, माँ रेडियो की आवाज सुनाई पड़ रही होती थी, माँ चुपके से दबे कदम आती थी और कहती थी कि अच्छा रेडियो सुन रही हो या पढ़ाई कर रही हो। तो ये हम सब के दिल की बात है और आज आप हमारे जज्बात को और टटोल रही हैं, साझा कर रहे हैं अपनी बातों से। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं वडोदरा से हूं, रेडियो पर आपको लाइव सुनना बेहद आनंददायक है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं सच कहूं कि रेडियो की खूबसूरती यही है कि हम आवाज के जरिए कल्पनाओं के एक संसार बुनते हैं। जैसे मैं अगर यहां पर कार्यक्रम सुन रहा हूं तो मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है जितना कि रेडियो पर सुनने का है। हालांकि अब रेडियो सेट इतने प्रासंगिक नहीं है क्योंकि लोगों के पास फोन है और डिजिटल माध्यम है जिसका जिक्र आपने किया। अब देखिए ना, कल्पनाशीलता से हमारे सामने कल्पना चित्र बन रहा है बचपन वाला, और आपको हम आपके बचपन के गलियारों में लिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो भीलवाड़ा शहर राजस्थान का शहर है जहां आप रही हैं, तो कैसा रहा आपका बचपन, कैसे बीता? आप पढ़ाई में अव्वल रही और क्या बचपन से ही इंजीनियर बनने का सपना था या फिर कुछ और बनना चाहती थी? धीरे धीरे ये सफर तय हुआ, बताइए वो कहानी आप।
0: तो ममता जी, मैं जो भीलवाड़ा राजस्थान का एक छोटा सा शहर है जहां पर मेरा बचपन बीता है, और बहुत ही सिंपल लाइफ थी उन दिनों हमारी। और मेरे माता पिता दोनों टीचर रहे हैं और परिवार में एकदम डिसिप्लिन का, अनुशासन का और पढ़ाई का माहौल ही हमेशा रहा है। और आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी पहुंची हूँ, मेरे माता पिता और परिवार वालों के दिए गए संस्कारों की वजह से ही मैं पहुंची हूँ। और जहां तक आपने पूछा इंजीनियरिंग का सपना, तो ऐसा कोई फिक्स ड्रीम तो नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ करना है। और पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था बचपन से ही, और स्पेशली साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स का काफी मुझे इंटरेस्ट था। तो जब टेंथ के बाद, अभी भी ऐसा ही होता है, टेंथ के बाद नॉर्मली हमें एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, उसके हिसाब से करियर। तो साइंस मैथ

0: साइंस, बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। तो उस समय हालांकि लड़कियां इतना ज्यादा मैथ्स की और उनको नहीं दिलाया जाता था सब्जेक्ट, और साइंस नहीं लिया करती थी, बट मुझे इसमें काफी दिलचस्पी थी तो मैंने ये लिया। और मुझे याद है उस समय भी कुछ थोड़ा ऐसे चैलेंजिंग ऐसे मिल बजाती थी बातें सुनने को कि देखते हैं चल पाएगी कि नहीं मैथ्स में, चल पाएगी कि नहीं। तो मुझे जो वो चीज थी बहुत ही एक एक जैसे बोलते हैं ना कि
1: टच कर
0: गई, तो मुझे कुछ करके दिखाना ही है,
1: चुनौती के रूप में लिया,
0: चुनौती के रूप में। और फिर मैंने 11th 12th काफी क्रूशियल रहते हैं आज भी सभी बच्चों के लिए, करियर फॉर्मेशन के लिए। तो मैंने फिर याद है मुझे 11th 12th में मैंने बहुत मेहनत की जो सब्जेक्ट्स थे मेरे, और वहां पे उस समय तो ट्यूशंस वगैरह जो जाते थे साइकिल चला के कुछ 5-6 किलोमीटर दूर अलग अलग साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो टीचर थे ट्यूशन लेके। और फिर मैंने चूंकि जब मेहनत करेंगे तो मेहनत तो रंग लाएगी
1: जी बिल्कुल,
0: और फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा आया कि मैंने स्कूल भी टॉप किया और
1: क्या बात है
0: स्टेट लेवल पे भी मुझे 18th रैंक मिला।
1: हाँ।
0: और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से छात्रवृत्ति के लिए भी ऑफर मिला। तो उसके बाद से मुझे लगा कि हार्डवर्क ऑलवेज पेज, कि आपको मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और जो आपने इंजीनियरिंग की बात की है तो उस समय जेई मेंस तो नहीं होता था, लेकिन हर स्टेट का एक अपना इंजीनियरिंग का टेस्ट था, हमारे यहाँ उसे पीईटी बोलते थे, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट
1: जी।
0: तो उसमें मैं अपीयर हुई थी और उसमें भी फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर जोधपुर में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां मेरा एडमिशन करवाया गया। हाँ
1: जी।
0: एक बात मैं बताऊंगी कि चूंकि जब उस समय ये बात होगी 92 के आसपास की, तो पहला तो लड़कियों को इंजीनियरिंग में और दूसरा लड़कियों को घर से बाहर भेजने में थोड़ी सी
1: शहर से बाहर नहीं जाना
0: झिझक रहती थी
1: जी जी,
0: तो वो एक चैलेंज था। तो काफी समझा के कि आप बहुत अच्छे से रहना है, सब कुछ पूरी सीख दे के, और फिर मेरे माता पिता कन्विंस हो गए और मुझे इंजीनियरिंग की मेरी शुरुआत हुई जोधपुर सिटी से। तो बहुत अच्छा रहा स्कूल का वो सफर और वो बचपन के दिन, और जो बचपन में तो मुझे याद है मेरी एक छोटी सी गुड़िया होती थी और
1: अच्छा।
0: मैं शायद 10th तक तो मेरा 3-4 घंटे उसी में चला जाता
1: क्या
0: था, उसकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग और कुछ छोटी छोटी क्रिएटिव चीजें, क्योंकि मम्मी पापा दोनों स्कूल रहते थे तो घर पे थोड़ा मैं जैसे उस समय इतना टीवी भी नहीं था, तो ये सब हॉबीज मेरी थी उस समय भी।
1: तो वो जो गुड़िया गुड्डे का खेल रचाती थी और फिर घर से बाहर निकलने लगी, तो और आपको तो और भी हमने देखा कि और भी बहुत सारे शौक हैं, डांस का भी शौक है, तो क्या इस बात के लिए कहीं घर वालों से डांट तो नहीं खाई आपने,
0: नहीं, नहीं।
1: या कोई डांट मार खाई हो तो वो भी बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: नहीं जी, इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी, समझ जाते थे मम्मी पापा। हाँ
1: जी जी, तो मतलब एक अच्छी लड़की थी जो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड लाइफ जीती थी।
0: बिल्कुल,
1: तो ठीक है बचपन की शरारतें तो सभी करते हैं, लेकिन अगर मीनाक्षी जी की तरह इंजीनियरिंग का शौक है और अगर कोई कहे कि गणित की पढ़ाई क्या ये लड़की करेगी, इंजीनियरिंग की ओर क्या जाएगी ये लड़की, तो चुनौती के रूप में ले और दिखा दे कि हम यहां पहुंच सकते हैं, और आज मीनाक्षी जी इस ओहदे पर हैं। तो अब यहां पर एक गाना आना चाहिए।
0: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: कौन सा गाना बताइए? रोजा फिल्म का गाना सुनवाएं।
0: ठीक है, रोजा फिल्म का सुनवाइए, उससे जुड़ी यादें भी मैं बाद में शेयर करूंगी।
1: जी बिल्कुल।

0: दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, छोटी छोटी आशाएं ही तो बड़े बड़े सपने बुनवा लेती है। और छोटा सा सपना आपने देखा और इतने बड़े फलक पर आपने आसमान को छुआ मीनाक्षी जी। हमें लगता है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खासतौर से सखियों के लिए, जहां पर बहुत सारे अवरोध होते हैं घर में कि ये न करो वो न करो। ऐसे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि उस समय का जो जमाना था, उस समय का कॉलेज जीवन आज की तुलना में काफी अलग रहा होगा, तो कोई ऐसी याद है, कोई ऐसा अनुभव है जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ला देती है?
1: कॉलेज का जो एक्सपीरियंस था, डेफिनेटली जो आपने बताया कि कॉलेज लाइफ उस समय की बहुत अलग थी, और 93 की बात है जब हम कॉलेज में पढ़ना शुरू किया था और जोधपुर सिटी थी, तो कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसमें तो एक गर्ल्स का जो प्रोपोर्शन था बहुत कम था। जैसे 300 का हमारा बैच था उसमें से केवल 18 गर्ल्स थी और 35 की क्लास में से 4 गर्ल्स थी हम लोग, तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है। बट एक इंसिडेंट जो मुझे काफी अच्छा लगता है और बहुत मैं उसको याद करती हूँ, वो कॉलेज से जुड़ी हुई एक जो याद है मैं बताना चाहूंगी कि हमारे कॉलेज में ऐसे सब डांस कंपटीशन और एनुअल फेस्टिवल होते थे, कल्चरल एक्टिविटी वगैरह।
0: जी जी।
1: तो उसमें ऐसा होता था उस समय कि जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें, चूंकि मेरा इंटरेस्ट काफी था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, तो उसमें एक सोलो डांस कॉम्पिटिशन भी रखा गया था, बॉयज के लिए था। तो मैंने फिर थोड़ा और पता किया कि मुझे भी इसमें पार्ट लेना है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि बचपन से ही हमारे यहाँ एक माहौल था कॉलेज डांस का है, या फिर मेहंदी सीखो, एम्ब्रॉयडरी या अच्छा। इस तरह की चीजें, क्योंकि जब भी समर वैकेशन होती थी हम लोग हॉबी कैंप ज्वाइन करते थे और वहां पे ये सारी चीजें हम सीखते थे। तो जब मैंने फिर पता किया डांस कंपटीशन में मुझे भी पार्ट लेना है, तो फिर उन्होंने बोला गर्ल्स के लिए तो नहीं है कोई भी ऐसा कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड,
0: जी
1: तो फिर मुझे बताया गया कि आप बॉयज के साथ ही आप पार्टिसिपेट कर लीजिए और उन्हीं के साथ आप कंपटीशन में हिस्सा लीजिए। तो फिर मुझे लगा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, और जो आपने जो अभी गाना बजाया है दिल है छोटा सा,
0: छोटी सी
1: मेरी पसंद का गाना था उस समय। और उस गाने पे मैंने फिर कुछ जो 8 to 10 डेज थे हॉस्टल में, जब हमें फ्री टाइम मिलता था हॉस्टल के कॉरिडोर वगैरह में खाली समय में, उसकी कुछ थोड़ी बहुत हमने प्रिपरेशन की, और फिर कॉम्पिटिशन वाला दिन आया। और वो मेरे लिए एक बहुत ही यादगार पल इसलिए था कि मैंने पहली बार किसी बड़े स्टेज पे, किसी बड़े ऑडिटोरियम हॉल में, फुल था ऑडिटोरियम हॉल, सारे बैचेस के सब सीनियर्स जूनियर्स सारे टीचर्स सब थे वहां पे, और फिर मैंने इस गाने पे परफॉर्मेंस दी। और मुझे इतना मतलब उसके बाद इतनी खुशी हुई कि बाद में जब प्राइस का वक्त आया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुए, तो मुझे पता लगा कि फर्स्ट प्राइस मुझे मिला और 16 बॉयज थे मेरे साथ कंपटीशन में।
0: क्या बात है,
1: 16 बॉयज एंड आई वाज द ओनली गर्ल कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड एंड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा था और जब मेरे डीन मुझे फर्स्ट प्राइज के लिए जो सर्टिफिकेट है वो दे रहे थे, तो पूरे ऑडिटोरियम हॉल में जितने भी लोग थे सब खड़े होके एक साथ एक रिदम में क्लैपिंग की साउंड अभी भी मेरे कानों में बजती है।
0: क्या बात है।
1: और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया और मुझे लगा कि अगर हम सोच लें और प्रॉपरली हम उसमें मेहनत करें, क्योंकि मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मेहनत अगर हमारी पूरी होगी तो हम किसी भी मंजिल को हम पा सकते हैं।
0: जी।
1: तो ये इंसिडेंट मुझे बहुत ही टचिंग लगता है मेरे कॉलेज लाइफ का।
0: बिल्कुल सही बात है, और चैलेंजेस को लेना बहुत जरूरी है। अगर वहां पर आप हार मान लेती कि इतनी सारी महिलाओं में आपका चयन नहीं हो पा रहा, पुरुषों के साथ आपको भेजा जा रहा है, तो शायद आज आप ये बात माइक के सामने नहीं कह पाती। और ये सखियों के लिए इंस्पायर करने वाली बात है। यहां पर मीनाक्षी जी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर ब्रेक के बाद आते हैं और बहुत सारी बातें आपसे बतियानी हैं।

0: दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और आज का ये प्रोग्राम विशेष है और आज हमारे स्टूडियो में आई हैं हमारे आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी। उनसे बहुत सारी बातें हमें करनी है लेकिन श्रोताओं की टिप्पणियां भी हम पहुंचाते चले। हमारे एक सुधी श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मैंने आपके साथ आकाशवाणी जयपुर में काम किया था। इन्होंने लिखा है वो अनुभव बहुत शानदार रहा और मैंने आपसे कंप्यूटर नेटवर्किंग और ऑडियो डिजिटाइजेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा। आपको डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग की गहरी जानकारी है, मेरी शुभकामनाएं आपको। और भी बहुत सारे श्रोता बहुत कुछ लिख रहे हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि ये गुड़िया की बात कहकर आपने खुशी दोगुनी कर दी, हम सभी बचपन की बातों से बहुत खुश होते हैं। मीनाक्षी जी आपने गुड़िया की बात कही थी उससे लोगों को बहुत अच्छा लगा। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी कहानी सुनकर कुछ अपनी बातें याद आ रही हैं स्कूल टाइम की, लेकिन मैं नॉन टेक्निकल स्टूडेंट रही हूं, 12 तक ही मैथ्स पढ़ा था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं स्क्रू ड्राइवर से खोलने लग जाता था रेडियो को, पापा अक्सर कहते थे कि जो उसमें बोल रहा है क्या उनको बाहर निकालेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई छोटे छोटे मनुष्य होते होंगे जो ये बोल रहे हैं, कि जब बड़े हुए तो पता चला कि ये तो नेटवर्क के द्वारा ही चलाया जाता है। क्या कहेंगे आप इन सभी श्रोताओं?
1: टेक्नोलॉजी का कमाल है ये। और श्रोताओं के जो डाउट है, बिल्कुल जो लास्ट में जिन्होंने बताया कि खोल के उन्होंने देखा कि क्या अंदर कौन है जो बैठ के बोल रहा है, तो बचपन में यही लगता था कि आवाज कहाँ से आ रही है।
0: बिल्कुल। और आगे की बात नहीं बताई कि उसके बाद जो डांट खाई होगी, मार पड़ी होगी वो हम इमेजिन कर ले रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल अब हम आपसे जानना चाहते हैं कॉलेज से निकलने के बाद आपकी जो रेडियो की दुनिया में दाखिला हुआ, मतलब रेडियो की दुनिया से आपने जोड़ा खुद को, तो क्या बचपन से आपने रेडियो को चुना था कि रेडियो में ही जाएंगी या फिर कोई और जॉब चाहती थी और रेडियो में आई?
1: एक्चुअली ममता जी, हम भी बचपन में रेडियो तो बहुत सुना करते थे। हमारे घर पे भी एक रेडियो सेट होता था और उस समय तो चूंकि शॉर्टवेव ही ज्यादा हम चलता।
0: आपने कोई रेडियो तोड़ा तो नहीं था?
1: नहीं नहीं, मैंने नहीं तोड़ा था, लेकिन उसको ट्यूनिंग बार बार ज्यादा के करना पड़ता था
0: जी।
1: क्योंकि जब ट्यून करते थे थोड़ी देर में शिफ्ट हो जाता था उसका ना बैंड शॉर्टवेव में, फिर से जाके उसको ट्यून करना पड़ता था। तो वो बहुत ही एक एंटरटेनमेंट का अच्छा उस समय टूल था और उस समय कुछ और मोबाइल टीवी वगैरह और कोई भी साधन नहीं थे, तो रेडियो की बहुत सारी यादें हैं मेरे पास भी। और कॉलेज में भी हम रेडियो काफी सुना करते थे और उस समय तो विविध भारती भी शुरू हो गया था, तो रात को हमेशा हम एक घंटा रेडियो के कार्यक्रम सुना करते थे उस समय। और कॉलेज से निकलने के बाद जो रेडियो में आने की जो जर्नी रही है उसमें भी काफी उसमें हार्डवर्क रहा है देखा जाए तो, क्योंकि एक यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम
0: जी,
1: तो उसमें मैंने अपीयर हुई थी और फिर बहुत ही वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया लेवल का एक एग्जाम होता है और काफी टफ एग्जाम होता है
0: जी।
1: और उसमें जो भी सारे डिपार्टमेंट है उसमें डायरेक्टली क्लास वन ऑफिसर का आपको जॉब उसमें मिलता है
0: जी।
1: तो उसका रिटन टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट का के बाद उसका इंटरव्यू वगैरह होता है
0: जी,
1: और
0: जी।
1: ये सारे प्रोसेस में करीब करीब 2 साल का समय लगता है। तो कॉलेज निकलने के बाद ही मैंने ये एग्जाम में मैं अपीयर हुई और लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद चूंकि डिपार्टमेंट जब चुनने की बात आई तो मैंने डेफिनेटली ये डिपार्टमेंट को, जो ब्रॉडकास्टिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है और जो हमारी सर्विसेज है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज
0: जी,
1: तो उसमें को मैंने चुनना पसंद किया क्योंकि काफी ये एक जैसे बोलते थोड़ा ग्लैमरस डिपार्टमेंट उस समय लगता था और आज भी है। और इस डिपार्टमेंट की खास बात ये भी है कि हम रेडियो से जुड़कर पब्लिक सर्विस का काम भी हम यहां पे कर रहे हैं
0: जी,
1: तो ये एक इसका दूसरा पहलू था जो मुझे काफी पसंद था। तो उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो आकाशवाणी बीकानेर के लिए मुझे पहला अपॉइंटमेंट मिला, अपॉइंटमेंट लेटर, तो मैंने आकाशवाणी बीकानेर से 99 में अपनी सेवाएं प्रारंभ की और आकाशवाणी जैसी एक गरिमामय संस्था से मैं जुड़ी और आज मुझे बीकानेर से जयपुर, अहमदाबाद, वड़ोदरा और आज मुंबई
0: जी,
1: तो 27 ईयर्स मुझे हो गया इस संस्था में काम करते हुए और काफी मुझे एक गर्व का अनुभव होता है कि मैं आकाशवाणी जैसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ।
0: जी बिल्कुल, हम सबको गौरव का एहसास होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे श्रोता नोट करते हैं, और हम सबके लिए रेडियो एक मानक के रूप में रहा है। भाषा हो, शब्द हो, वाक्य विन्यास हो, मतलब कॉपी कलम लेकर हम सब नोट किया करते थे। तो आज भी जब हम माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि कोई न कोई कॉपी कलम लेकर हमारी बात को सुन रहा होगा। तो जो भी बोलें तथ्यपरक बोलें। और देखिए ना, हमारे श्रोताओं की उद्गार कितने बेहतरीन हैं। आज एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये सुरम्य सफर मीनाक्षी जी और ममता जी की बातचीत भारतीय संगीत की उस अनमोल विरासत है और सदाबहार धुनों के नाम रहेगा जिसने हर दिल को छुआ है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के पावन अवसर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में रेडियो की अदम्य शक्ति, दैनिक जीवन में इसकी जीवंत उपस्थिति और सामाजिक और राष्ट्रीय

0: कि मैं तो सुन रहा हूँ और एक शिक्षक हूँ और सखी सहेली सुन रहा हूँ, स्कूल का काम भी साथ में कर रहा हूँ। और एक श्रोता ने लिखा है, तकनीकी तब्दीलियों के संग ताल से ताल मिलाकर वीवीएस अपनी चमक बरकरार रखे हुए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, जरा बताइए कि और अच्छा लगने के लिए हम क्या करें। यहाँ पर संगीत का दामन भी थाम ले।
1: श्योर,
0: कौन सा गाना हमें लगता है कि ये गाना सुनते हैं, अंग्रेजी मीडियम फिल्म का।
1: हाँ,
0: माइक्रोफोन पर आने से पहले आपने इस गाने का जिक्र किया था, सुनते हैं यही गाना।
1: जी।

0: बहुत बार ऐसे सिचुएशन आए या ऐसी परिस्थितियां बनी कि कठिन समय में भी हम लोगों ने तकनीकी रूप से ब्रॉडकास्टिंग जारी रखा
1: जी।
0: बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी, तो मैं एक चीज थोड़ा सा बताऊंगी, हमारे श्रोता लोग भी उससे रिलेट कर पाएंगे कि हमारे यहाँ जैसे कि जानते हैं पहले LPs होते थे, फिर मैग्नेटिक टेप में रिकॉर्डिंग्स होती थी। तो 2002 की बात है जब मैं जयपुर में कार्यरत थी, और उस समय नए नए कंप्यूटर्स आना शुरू हुए थे और कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्डिंग का आरंभ हुआ था
1: जी।
0: और उसी समय एक ये प्रक्रिया भी शुरू हुई थी कि जो भी हमारी आर्काइव वैल्यू का जो कंटेंट है, क्योंकि आकाशवाणी का तो इतिहास बहुत पुराना है और हमारे पास कई महानुभावों की महान ऑडियो बाइट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो उस समय उसको डिजिटाइज करने का भी एक दौर शुरू हुआ था। तो उसमें ये था कि चूंकि अब कंप्यूटर आ गया है तो सब कुछ उसके थ्रू फास्ट और अच्छा होने लगा था
1: जी।
0: और जो पुराने LPs थे और जो मैग्नेटिक टेप्स थी उनको भी हम रियल टाइम में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस शुरू किया था। तो उस समय जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम लंबे समय तक स्टोर करते हैं मीडिया को, जब टेप या उसके अंदर स्टोर रहता है, तो कुछ थोड़ी सी उसमें नॉइज वगैरह डेवलप हो जाती है। तो उस समय हम लोगों ने एक कोशिश की कि जो भी हम कन्वर्जन कर रहे हैं डिजिटल मीडिया में, जो ला रहे हैं मैग्नेटिक टेप्स को, तो उसमें जो भी उसका नॉइज कम्पोनेंट है
1: जी।
0: उसको हम थोड़ा क्लीन कर लें। तो उसके लिए हमने एक एल्गोरिथम, एक सेट ऑफ स्टेप्स बनाया सॉफ्टवेयर के थ्रू कि कैसे हम उसको अच्छा बना दें ताकि हमारे श्रोताओं को स्पष्ट रूप से क्लियर रिकॉर्डिंग सुनाई सुनने को मिले। और उस काम में बहुत मजा आता था क्योंकि आपको सुन के देखना पड़ता था कि ये कैसा रिकॉर्ड है और अब क्लीन होने के बाद कैसा है
1: जी।
0: और उसमें एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस इसलिए बनाना पड़ता था कि बेसिकली नॉइज रिडक्शन में आप कुछ फ्रिक्वेंसीज को ही हटाते हैं, तो आपका जो एक्चुअल कंटेंट है
1: जी
0: वो कहीं भी किसी भी तरह से अफेक्ट ना हो। तो उस बैलेंस के साथ हमने कई हजारों रिकॉर्डिंग्स को क्लीन करके और फिर उसको अच्छे से स्टोर किया है, तो वो काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा करने में, मेरे इंटरेस्ट का भी था और उसके लिए फिर मुझे रिकॉग्निशन और एक अवार्ड भी मिला। तो इस काम को करने में मुझे बहुत मजा आया ममता जी।
1: जी, और ये सुनते हुए हमें बहुत मजा आ रहा है ये सब बातें कि आपका योगदान कितना ज्यादा रहा, और हमें पता है कि एक महिला के लिए एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाना, एक साथ कई दायित्व निभाना कितना मुश्किल होता है हम सब महिलाओं के लिए। आप एक महिला हैं खुद, और महिलाओं के लिए किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंचना काफी संघर्षमय होता है, चुनौतीपूर्ण भी होता है, तो आपने किस तरह से ऑफिस और पारिवारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य बिठाया और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है, कई अवार्ड्स जीते हैं, उस अवार्ड्स के बारे में भी बताइए और किस तरह से आपने सामंजस्य बिठाया, क्योंकि हमने सुना है कि जब शुरुआती दौर में, करियर के शुरुआती दौर में आपके पास बहुत सारे काम थे, एक साथ कई काम सौंपे गए थे और आपके बच्चे भी छोटे थे उस समय, तो ये सारा कुछ कैसे मैनेज किया, एक साथ बहुत सारी बातें पूछ रही हूँ।
0: नहीं नहीं, बहुत आपके सवाल बहुत एक मुझे पुरानी मेमोरी में, फ्लैशबैक में भी जाती हूँ कई बार और वर्तमान को भी मैं देख रही हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन है बेसिकली वो वर्क लाइफ बैलेंस से जुड़ा हुआ है कि आप प्रोफेशनल लाइफ के साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे बैलेंस करना है, और मुझे लगता है कि महिलाओं और पुरुषों सबके लिए ये बात उतनी ही जरूरी है आज के दौर में। महिलाओं के लिए थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है
1: जी,
0: क्योंकि हमारी सोसाइटी में प्री डिफाइंड जेंडर रोल्स हैं कि घर की जो जिम्मेदारियां हैं, घरेलू जो काम है, उसकी मोर और लेस अभी भी महिलाओं को ही वो थोड़ा देखना होता है, तो उनके लिए ये थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है
1: जी,
0: कि ऑफिस के काम के साथ साथ वो घर के काम या बच्चों से जुड़े हुए काम को वो कैसे पूरा करे
1: जी।
0: तो मैं भी इस फेज से निकली हूं, तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी मेरी ओर से जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है कि मुझे लगता है हर किसी को जब हम ऑफिस से घर चले जाते हैं तो पहला तो हम ऑफिस की चीज ऑफिस में रखें, घर पे आके ऑफिस का हम ना सोचें, और वी शुड ट्राई टू डेवलप एक मेंटल ऑन ऑफ स्विच कि अब हम घर आ गए तो हम घर पे या परिवार पे या अपने खुद पे अपने आप को भी आप प्राथमिकता दें और खुद पे फोकस करें। दूसरा मैं ये कहूंगी कि कई चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करके भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसमें सबसे अहम चीज है कि डाइट, आप जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आपको पर्याप्त नींद लेना चाहिए और पानी की मात्रा भी बराबर हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे सभी इस बारे में जानते हैं, बट इसको कैसे अपनी लाइफ में लाना है वो एक सोचने वाली चीज है और लाना चाहिए सभी को, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें करके ही आप अपने में काफी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा
1: जी।
0: उसके अलावा ममता जी, मैं आपको दो चीजें और बताऊंगी कि आप उसमें वर्क लाइफ बैलेंस आप काफी अच्छा बना सकते हैं। शायद आप जानते ही हैं कि एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, मुझे लगता है एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जैसे हर दिन हम खाना खाते हैं वैसे ही एक्सरसाइज जरूरी है। इसमें महिलाओं को काफी हेजिटेशन होता है, और अभी रिसेंटली मेरे ऑफिस में मेरे सेक्शन से ही एक महिला आई कि मैडम आप कैसे जाते हैं, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है। मैंने उन्हें काफी मोटिवेट किया कि आप टाइम निकालिए, आप कैसे भी करिए, घर जाइए, थोड़ा काम शेयर करिए घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक्सरसाइज या जिम वगैरह ज्वाइन करिए। और एक्सरसाइज में भी बहुत सारी होती है, कार्डियो होती है, वॉकिंग होती है, बट मुझे लगता है वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोगों को ये सब एक्सरसाइज का पूरा ध्यान देना चाहिए। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगी कि ये सब चीजें करने के साथ साथ मुझे लगता है फॉर एवरी पर्सन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी जो हॉबीज है, जो शौक है, वो भी वो पूरे करे। क्योंकि क्या होता है, समय के साथ साथ जिम्मेदारियों के चलते हम अपने शौक भूल जाते हैं।
1: जी जी।
0: और जब आप खुद करके देखेंगे वो सारे शौक, चाहे गाने का हो, चाहे ट्रैकिंग का हो, चाहे ट्रैवलिंग का हो, चाहे पेंटिंग का हो, ड्राइंग का हो, वो सब जब आप करेंगे तो आपको जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपको मिलेगी उससे, और उसी से आप एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं। क्योंकि फॉर एवरी वन आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, फैमिली लाइफ इज इम्पॉर्टेंट।
1: बिल्कुल,
0: दोनों पहलुओं पे हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बैलेंसिंग इज द की।
1: जी, सही कह रही हैं आप। और हमें पता है कि आप खुद फिटनेस के लिए बहुत सजग रहती हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मीनाक्षी जी नियमित रूप से अभी इस व्यस्तता में भी जिम जाती हैं, और वो बड़े बड़े वेट लिफ्टिंग भी करती हैं, क्योंकि हमने इनके कुछ वीडियोस देखे हैं। और ये राज की बात है, वो बताना नहीं चाहती, लेकिन हमने यहां पर उजागर कर दिया है। और एक दो शौक के बारे में और बताना चाह रहे हैं कि उन्हें डांसिंग का भी बहुत शौक है और पेंटिंग का भी बहुत शौक है, तो जरा इन दोनों शौक के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जाहिर सी बात है कि आप जहां जिस ओहदे पर हैं आपको शायद संकोच हो रहा होगा, लेकिन हमारे श्रोताओं को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी।
0: हाँ, मुझे लगता है कि जैसे मेरे तो ये शौक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो डांसिंग का शौक भी अच्छी चीज है, क्योंकि अपने आप से आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और जब मैं जिम नहीं जा पाती हूँ, कुछ अच्छे यूट्यूब पे वीडियो देख के कार्डियो एक्सरसाइज में अलग अलग डांस फॉर्म्स होती है
1: जी,
0: वो मैं कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बीच में मैंने डांस क्लासेस भी ज्वाइन की थी,
1: क्योंकि क्या बात है,
0: अभी जो फॉर्मेट चेंज हुए डांस के, तो मेरे बच्चों ने भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि मम्मी आपको जाना चाहिए। और जिम के लिए तो मैं मेरे दोनों बच्चे भी जिम जाते हैं, तो काफी हमारे घर पे जो माहौल रहता है वो उसी से जुड़ा हुआ रहता है कि फिजिकल पावर भी कितनी किसके पास है, सब अपना दिखाते हैं दमखम, तो वो माहौल वैसा ही है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं रेगुलर हूँ, एटलीस्ट लास्ट 20 ईयर से तो मैं ये जा ही रही हूँ। और दूसरा, आपने जो पेंटिंग की भी बात बताई है, तो वो भी बचपन से मुझे इस चीज का शौक था। स्कूल टाइम में मैंने एक दो क्लासेस जब ज्वाइन की तो मुझे काफी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और नेचुरली 11th 12th में तो पढ़ाई के अलावा और कोई शौक पूरा नहीं कर पाई मैं, लेकिन उसके बाद मैंने फिर से पेंटिंग में अपना ध्यान दिया और फिर से कोशिश की। और अभी भी जब मुझे फ्री टाइम मिल जाता है सैटरडे संडे, या मेरे रूम में भी जो बोर्ड लगा हुआ है, कुछ कुछ छोटे छोटे ड्राइंग्स में बनाती हूँ मोटिवेटिंग।
1: क्या बात है,
0: जब मेरा स्टाफ आता है सामने बैठ के तो उनका पहला क्वेश्चन, मैडम ये आपने बनाया है क्या? तो मैं कहती हूँ हाँ मैंने बनाया। तो अच्छा लगता है ये सब छोटी छोटी चीजें करके, कि आप एक लाइवलीनेस बनी रहती है उसमें, कि आप कुछ न कुछ करते रहें लाइफ में, कुछ क्रिएटिव हो, कुछ जिससे आप सीखें दूसरे सीखें। और मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि काफी चीजें हैं जो मैं आज की यंग जनरेशन से सीख रही हूँ।
1: जी जी।
0: बच्चे हैं चाहे कोई भी हो, ऑफिस में भी जो हमारे यंगस्टर्स जो कलीग हैं, तो उनसे भी मैं बहुत चीजें सीखती हूँ।
1: जी जी।
0: और टेक्नोलॉजी को हमेशा अपने साथ रखती रही हूँ, उसमें जो नई नई चीजें हैं, जो अपग्रेड्स हैं, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि सीखते रहूं और अपने आप को अपडेटेड रखूं।
1: जी, मतलब आपकी बातों से ये हमें भी प्रेरणा मिल रही है कि ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, अपने बच्चों से भी सीखें और तकनीक के इस दौर में टेक्नोलॉजी का साथ तो निभाना ही पड़ेगा, भले उसके गुलाम ना हो।

और अब यहां पर एक टिप्पणी एक दो अपने श्रोताओं तक पहुंचा रही हूं। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो मेरे लिए केवल एक माध्यम नहीं बल्कि बचपन से जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। यद्यपि मैंने अपने व्यावसायिक जीवन में बैंकिंग सेवा को चुना, फिर भी रेडियो के प्रति मेरा प्रेम कभी कम नहीं हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद जब सामुदायिक रेडियो से जुड़ने का अवसर मिला तो लगा जैसे अपने पहले प्यार से फिर मुलाकात हो गई है। क्या बात है भाई, आज भी रेडियो की दुनिया में सक्रिय रहकर वही आनंद वही अपनापन है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम भी बीकानेर वाले खुश हुए कि आपकी शुरुआत हमारे शहर से हुई है। और एक श्रोता ने लिखा है कि लाइसेंस युग से डिजिटल युग और एरियल युग से FM ब्लूटूथ युग तक के रेडियो के सफर का साक्षी होने पर मुझे गर्व है। और आकाशवाणी एक चमत्कार से चरम शिखर तक अभी भी अपनी चमक बरकरार रखने में सक्षम है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारी शादी हुई थी सखी सहेली प्रोग्राम की सखी यानी कि हमारी धर्म पत्नी शादी के अगले दिन घर पर ये देखकर हैरान हो गई कि मैं यानी दीवाना सखा सुबह सवेरे घर के पूजा रूम में पहले हाथ जोड़े सीधे रेडियो ऑन करके विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनने लगा। बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की आ रही है, लेकिन अब एक गाना सुनते हैं। यहां पर गाना है ये।

0: ये चक दे इंडिया फिल्म का गाना था। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि मीनाक्षी जी बहुत बढ़िया बेहतरीन पेंटिंग बनाती हैं, जिसका जिक्र भी किया है। अब आप इसे सजीव रूप से देख सकते हैं ये मोबाइल के स्क्रीन पर, तो आप देखिए कि मीनाक्षी जी कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनाया करती हैं। आज भी ये शौक इन्होंने बरकरार रखा है, अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर ये पेंटिंग्स बनाया करती हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है तो उसे जरूर परवान दे, उसे जरूर पंख दे, यही हमारा कहना है। और मीनाक्षी जी हमें बताइए कि अंत में देशभर की बेटियों से, महिलाओं से चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी?
1: ममता जी, पता ही नहीं लगा प्रोग्राम का इतना समय पूरा होने को आ गया है, और बहुत अच्छा लगा मुझे विविध भारती स्टूडियो में आकर अपनी देश के सभी श्रोताओं से कनेक्ट होकर इस माध्यम के थ्रू। मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती है
0: जी,
1: परिस्थितियां तो हमेशा बदलती रहती है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट अगर

0: हमारी विल पावर स्ट्रांग है, डिटर्मिनेशन है और मेहनत है, तो मुझे लगता है कि हम सभी अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं।
1: जी,
0: तो लास्ट में मैं दो लाइन कहूंगी सभी के लिए, जो कि बहुत एक मुझे लगता है कि मीनिंगफुल है। न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए।
1: क्या बात है।
0: न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए, न ठहराव ऐसा कि सपने रुक जाए।
1: क्या बात है, बहुत
0: बढ़िया। तो जीवन में बहुत जरूरी है कि हम हर चीज का बैलेंस बनाए रखें। हमें अपने सपनों को भी पूरा करना है और अपना खुद का भी ध्यान रखना है। तो मैं ये कहूंगी, मी टाइम वाली जो बात है, सभी लोग अपने आप को भी प्राथमिकता दें, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ सभी को ध्यान में रखें और हमेशा आकाशवाणी और विविध भारती सुनते रहें। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीनाक्षी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आई और हम इस पूरी मुहिम में, इस सजीव प्रसारण में, फेसबुक लाइव में जो लोग जुड़े रहे उनका नाम भी हम शामिल करना चाहेंगे। जुबैर खान जो प्रोड्यूसर हैं, अनुश्री पाठक मैडम जो सखी सहेली प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, और तेजश्री कामले, HR पाटले, तकनीकी सहयोग भावना सिंदल, किरण बंग, समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, और कार्यक्रम के जो हमारे हेड हैं डॉ संतोष जाधव जी, और इंजीनियरिंग प्रमुख राजेश बेलदार जी और सोपान तायडे जी, आप सभी का हम शुक्रिया अदा करें आप सभी के सहयोग से, और सहयोग से के माध्यम से ही हम यहां तक पहुंचे और एक सजीव प्रसारण में आपसे हमने इतनी सारी बातें की, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब बस इतना ही कहें कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आप
1: नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाला, फेसबुक लाइव पे जो देख रहे हैं और जो रेडियो पे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू या रेडियो सेट के थ्रू देख रहे हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
1: नमस्कार।

भैया तुम मिस्टर, तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

हॉकी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश मैन, आज कहां का नेशन काहे की धरती मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही तू? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं तो।

बाला चंदाना, ये सोला साला चंदाना है तेरे ख्याला चंदाना, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या।

पाका नारंगी की पाका पाका चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

मे मान गरीब है तंदाना, सूरज से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे हरीब है तंदाना। गरीब है चंदाना, सूरत से अजीब है चंदाना, पर फिर भी नसीब है चंदाना, ये तेरे खरीब है।